शंभो, नमो सदा शिव ओम। हे परमेश्वर, जय भुवनेश्वर, जय शिव शंकर ओम। वी बाउ टू लॉर्ड शिवा। इन दिस वेरी ब्यूटिफुल कीर्तन भजन वी सिंग द मेनी नेम्स ऑफ लॉर्ड शिवा। वी कॉल हिम महादेव, वी कॉल हिम शंभो, शंकर, शिवा एंड महेश्वरा।